थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

0: प्रार्थना अभवत्। प्रार्थनया मनः शान्तम् अभवत्। इदानीम् एकाग्रतया अभ्यासं कुर्मः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सम्भाषणार्थं मया सह मम सखी स्मिता अस्ति। अद्य वयं गन्तुं, श्रोतुं, पठितुं, खादितुं इत्येतान् शब्दान् शृण्मः। तेषाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदामः। आज हम नए शब्द सुनेंगे, जैसे कि गन्तुं, श्रोतुं, पठितुं, खादितुं और उनका उपयोग करना सीखेंगे। गन्तुं का मतलब क्या होता है या पठितुं का मतलब क्या होता है, पहले एक वाक्य सुनिए। रामः पठितुं शालां गच्छति। राम पढ़ने के लिए शाला जाता है। रामः पठितुं शालां गच्छति। राम क्या करने शाला जाता है? रामः किं कर्तुं शालां गच्छति? तो उत्तर होगा, रामः पठितुं शालां गच्छति। यहाँ राम शाला जाता है, यह क्रिया होगी और क्रिया का उद्देश्य क्या है? पढ़ना। इसलिए राम शाला जाता है क्या करने? तो उत्तर होगा पढ़ने या पढ़ने के लिए। क्या करने संस्कृत में बोलते हैं किम कर्तुम, उत्तरम है, उत्तरम अस्ति पढ़ने यानी पठितुम। अग्रजा पठितुम विद्यालयम गच्छति। अग्रजः धावितुम क्रीडांगणम गच्छति। तो पठति क्रियापद का तुमुन रूप हुआ पठितुम, धावती क्रियापद का तुमुन रूप हुआ धावितुम, करोति क्रियापद का तुमुन रूप होता है कर्तुम। अस्तु, अभ्यासं कुर्मः। अहम् वदामि पठति, स्मिता भगिनी वदति पठितुम, पठति
1: पठितुम,
0: खादति
1: खादितुम,
0: धावति
1: धावितुम।
0: उत्तम। वैसे ही शृणोति इसका रूप होगा श्रोतुम, शृणोति
1: श्रोतुम,
0: करोति
1: कर्तुम,
0: वदति
1: तुम,
0: गायति
1: गातुम।
0: उत्तम। शृण्वन्तु एकं दीर्घं वाक्यं शृण्वन्तु। बालकः संस्कृतं श्रोतुं, संस्कृतं वक्तुं, गीतं गातुं, श्लोकार्थं ज्ञातुं संस्कृतवर्गं गच्छति। है ना, बहुत सीख लिया ना। तो बालक देखिए क्या क्या करने संस्कृत वर्ग जाता है। संस्कृतं श्रोतुं, संस्कृत सुनने के लिए, संस्कृतं वक्तुं संस्कृत बोलने के लिए, गीतम गातुम गीत गाने के लिए, श्लोकार्थम ज्ञातुम श्लोक का अर्थ जानने के लिए संस्कृत वर्गम गच्छति। पुनः एकवारं संस्कृत वाक्यम, दीर्घम संस्कृत वाक्यम शृण्वन्तु। बालकः संस्कृतं श्रोतुं, संस्कृतं वक्तुं, गीतं गातुं, श्लोकार्थ

0: लक्ष्मणानुचरो बली
1: काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः।
2: स्तोत्र पठनम अभवत। आज हमारे इस संभाषण के इस एपिसोड के 16 लेसन पूरे हो गए, 17वां चल रहा है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लोग लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है कि अगर कार्यक्रम का समय थोड़ा लंबा हो तो अच्छा होगा। जरूर आप

रिक्वेस्ट भेजिए, सूचनाएं भी भेजिए, आपको कार्यक्रम कैसा लगता है जरूर बताइए, हम अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेंगे। इदानीम शांति मंत्र, अनंतरम कार्यक्रमस्य समाप्ति। दुर्जन सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणू धुनी 90.4 FM वरती तुम्ही जुने आहात आणि आता आध्यात्मिक
1: सात्विकता का महत्व. संसार में चाहे मनुष्य हो या पशु पंछी प्राणी, सभी चाहते हैं वे सुख से जिए, जीवन में खुशी प्रेम आनंद पाते रहे. सचमुच ईश्वर और कुदरत ने सभी को सुखपूर्वक जीने का अधिकार दिया है, लेकिन आज के स्वार्थ भरे जमाने में कौन किसकी परवाह करता है. इन किन प्रकार न इच्छा पूर्ण करने में हर कोई जुटा रहता है, परंतु ये तो तामसिकता है. इन किन प्रकार न इच्छा पूर्ण करने में हर कोई जुटा रहता है, परंतु ये तो तामसिकता है. लेकिन एक सात्विक व्यक्ति तो सदा दूसरे के सुख दुख की परवाह करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बजाय प्यार बरसाता है. वह खुद के अधिकारों के साथ दूसरों के अधिकारों की रक्षा भी करता है. सचमुच सात्विकता तो देवत्व दिलाने वाला महान दिव्य गुण है. सात्विकता अर्थात मन के विचार मुख्य दिव्य गुण है. सात्विकता अर्थात मन के विचार मुख से प्रकट होने वाले बोल और इंद्रियों से घटने वाले कर्म को शुभ शीतल और विकार रहित बनाना, जीवन में पवित्रता को धारण करना तथा स्वयं को दिव्य बनाना ही सात्विकता को धारण करना है. जल शुद्धि अन्न शुद्धि और वातावरण से दुर्गंध की शुद्धि करना भी सात्विकता ही है. आत्मा की सतो रजो तमो ये तीन स्थितियां मानी गई है. सात्विकता आत्मा की प्रथम शुद्धतम सतो अवस्था है. जिस अवस्था में आत्मा सर्व गुणों से भरपूर होती है, जिससे आत्मा दिव्य बनती है, वह मानव को विनयशील बनाती है और हिंसा करने से रोकती है. जैन धर्म स्थापक महावीर जी ने प्राणी और पशु हत्या अर्थात हिंसा का निषेध किया है और सात्विक भोजन की प्रेरणा दी है. शुद्ध सादा ताजा कम मिर्च मसाले वाला शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन है, जबकि बासी तेज मिर्च मसालेदार मांसाहारी भोजन तामसिक भोजन माना जाता है. ईश्वर की याद में पकाया गया सात्विक भोजन जैसा अन्न वैसा मन के अनुसार सात्विक विचार पैदा करता है, जिससे मन शांत और बुद्धि स्थिर रहती है. कार्य की सफलता विद्या अध्ययन और प्रभु की याद में मन की एकाग्रता चाहिए और एकाग्रता के लिए मन बुद्धि की स्थिरता आवश्यक है, जो केवल सात्विक भोजन से ही पाई जा सकती है. अतः सात्विकता को अपनाइए और जीवन को दिव्यता से भर दीजिए. ऐसी हमारी

0: रेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: छह विकेट से हराया, विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
3: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
4: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
3: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26

0: मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार

0: दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेकिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति से।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के एलई कनसु।
4: ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಧ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯು ದಿನಾಂಕ 29 ಮೇ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಂಧರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಶಾಲೆಯು 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ. ಬಡ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ 117 ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಉಪಹಾರ ಔಷಧ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರೈನ್ ಲಿಪಿಯ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ, ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು 100% ಆಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನ್ಮ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, 6 ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು, ಅಂಧತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್, ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471482, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9448954235.
5: ಶ್ರವಣದಾನ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು. KLE ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಉಚಿತ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಕೇಳುವಂತೆ, ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಅರ್ಹತೆಗಳು: ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ತೀವ್ರವಾದ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಗು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಲಾಭಗಳು: ಮಗುವಿಗೆ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಗು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ, ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಇಂದೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿ KLE ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೊರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ. ENT OPD ಸಂಖ್ಯೆ 16.

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: एयर कंडीशन क्लासरूम्स में वर्ल्ड क्लास लैब्स के साथ KLE कॉलेज ऑफ फार्मेसी एयरपोर्ट रोड
1: KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलागामी एडमिशंस ओपन फॉर 2026-27 डॉक्टर एम एस शेषगिरी कैंपस बेलागामी KCET कोड E036 मोर देन 500 प्लेसमेंट ऑफर्स वर रिसीव्ड इन 2025-26 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड अ हाईएस्ट एनुअल पैकेज ऑफ अप टू 16 लाख पर एनम द यूनिवर्सिटी हैज 150 प्लस एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स एंड 50 प्लस डॉक्टरल डिग्री होल्डर्स वेल इक्विप्ड लर्निंग फैक्ट्री टिंकरिंग लैब एंड वाईफाई एनेबल्ड हॉस्टल फैसिलिटीज आर अवेलेबल यूजी कोर्सेस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल engineering, computer science and engineering, AI, electronics and communication engineering, electrical and electronics engineering, mechanical engineering, BCA, PG courses, MCA, MBA and M.Tech in structural engineering, civil. 60 plus companies including Infosys, Juniper Networks, HPE, Federal Bank and Bosch visit the campus for recruitment. For more information, call 0831 244 0322.

हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा। हमारे कामों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारा कॉन्फिडेंस। हम कितने कॉन्फिडेंट है उसी के ऊपर हमारा काम कितना अच्छा होगा ये निर्भर करता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ काम में या प्रोफेशनल लाइफ में जरूरी नहीं है, इवन पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। हम आधी बाजी तो हमारे कॉन्फिडेंस से ही मार जाते हैं, इसीलिए इस कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करते रहना जरूरी है। इसी टॉपिक पर आज हम बातें करेंगे, पर आज का शो शुरू करने से पहले आपको कुछ प्यारे गाने सुना देती हूँ। रिलैक्स हो जाइए और इस शो को एंजॉय कीजिए। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे करें? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो ताकत है उसके ऊपर फोकस करें। हर एक इंसान में ताकत भी होती है और कमजोरियां भी होती है। आप बोलोगे सिर्फ ताकत पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारी कमजोरियों से हम छुटकारा कैसे पाए या फिर कमजोरियों को ताकत में कैसे बदलेंगे? अगर उसके ऊपर हम काम ही नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे सुधारेंगे? भाई उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके खुद के अलावा आपके आसपास के सभी लोग, दुनिया के सारे लोग आपकी कमजोरियां आपको पॉइंट आउट कर करके दिखाएंगे और आपको कभी भी भूलने नहीं देंगे कि आप किस बात में कमजोर हैं। इसका असर ये होता है कि आपकी कमजोरी बार बार फोकस होती है, आपका फोकस अपनी कमजोरी पर जाता है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आप अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज करने लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग। इसलिए खुद के स्ट्रेंथ पे, खुद की ताकतों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। उन्हीं ताकतों की मदद से आप अपनी कमजोरियां ओवरकम करेंगे। सो ऑलवेज फर्स्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन आवर सॉन्ग्स, क्योंकि बातें काफी हो गई है। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। वी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

हमें कोई भी काम या कोई भी कला या कोई भी काम करने का तरीका सही इंसान से या फिर एक्सपर्ट से सीखना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप कहीं अकेले रह रहे हो, बहुत तेज भूख लगी है और आपको कुछ अच्छा खाना है, तो आप क्या करोगे? आपके आसपास के लोगों को पूछोगे कि भाई ये चीज कैसे बनाते हैं, या फिर फटाफट से तरला दलाल, संजीव कपूर या इन जैसे शेफ के वीडियोस और रेसिपीज को फॉलो करोगे? आपके आसपास के लोगों की रेसिपीज भी अच्छी ही होंगी, मैं मना नहीं करती हूँ, पर अगर आप संजीव कपूर, तरला दलाल जैसे लोगों की रेसिपीज फॉलो करोगे तो वो रेसिपी फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी एक्सपर्ट्स से जब आप सीखोगे तो आप सही सीखोगे, जो उन्होंने इतने साल की मेहनत से सीखा है वो चुटकियों में सीखने का मौका आपको मिलता है। इसीलिए आप क्या सीख रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर आप किस से सीख रहे हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप किसी एक्सपर्ट से सीखते हैं तो बहुत ही

हमेशा नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ नया अपडेटेड सीखते रहना चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2003 में 10th पास आउट हो गए या फिर 2008 में आपने डिग्री कर ली तो अब आपका सीखने की जर्नी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई है सभी चीजों में, बहुत सारी रिसर्च हुए है, तो अपने आप को अपडेट रखना और हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बहता पानी मीठा लगता है, और वही पानी अगर एक जगह रुक जाता है ना तो वो गंदा हो जाता है, उससे बदबू आने लगती है। तो अगर आपको भी मीठा बनना है तो आपको प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना चाहिए, और जब आपको लेटेस्ट सारी चीजें पता होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके चेहरे से झलकेगा। अगर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है तो अपनी स्किल्स को भी अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स में मैं आज आपको कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। अब दोस्तों, हमारे कल्चर में ना शादी ब्याह में नए कपड़े पहने जाते हैं, फेस्टिवल्स में नए कपड़े पहने जाते हैं, जन्मदिन पर नए कपड़े पहने जाते हैं। इसका क्या राज है भाई? इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जो कारण मेरे समझ में आता है वो ये है कि जब आप नए कपड़े पहनते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, आपको प्रेजेंटेबल लगता है, आप सुंदर दिखते हो। तो आप कैसे दिख रहे हो उसका आपके कॉन्फिडेंस से सीधा कनेक्शन है। ये हमारा कल्चर ही हमें सिखाता है। इसलिए अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करना है तो आपको सही तरीके से ड्रेसअप होना पड़ेगा। ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे तैयार हो जिसके बाद आपको खुद को एक कॉन्फिडेंट फील हो। आप खड़े रहे तो आपको ऐसा लगे कि किसी भी एंगल से मैं खराब नहीं दिख रही हूँ, या फिर ये छुपाना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कभी भी लगना नहीं चाहिए। यू शुड ड्रेस इन अ वे कि आपको कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील ना हो। वो कपड़े पहनो जिसे पहनकर आपको कॉन्फिडेंट फील हो। फिर वो कंफर्ट हो या स्टाइल हो, ये सारी चीजें सेकेंडरी आती है। जो कपड़े पहनकर आप 10 लोगों के सामने खड़े रह सको, 100 लोगों के सामने बात कर सको, ऐसे कपड़े आपको जरूर पहनने चाहिए। और सब लोग कहते हैं कि कपड़े, एक्सेसरीज, हेयर स्टाइल, शूज, बैग्स, ये सारा दिखावा है। हाँ, ये दिखावा है, पर इसी दिखावे को दुनिया सच मानती है। इसीलिए कॉन्फिडेंस और आपके अपीयरेंस का सीधा कनेक्शन है। सो यू शुड ऑलवेज ड्रेस फॉर सक्सेस।

बी रिलैक्स सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा और आप सुन रहे हैं KLE विनुदवनी 90.4 FM। हम कुछ सीख लेते हैं, कुछ करना हमें आ जाता है और उसके बाद में हमको ऐसा लगता है कि हाँ बस इतना इनफ है, इससे तो मेरी पूरी जिंदगी चलेगी, पर ये सच नहीं होता। जिंदगी जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग चैलेंजेस आपके सामने लाकर रखती है और आपको मजबूर करती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तब आपके अंदर का जो डर होता है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और जब डर खत्म हो जाता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ने लगता है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से बिल्कुल भी ना डरिए, उसे एक चैलेंज की तरह ट्रीट कीजिए और उस चैलेंज को पूरा कीजिए। हम बहुत होशियार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, अपडेटेड होते हैं, बहुत सारी स्किल्स हमारे अंदर होती है, वी ड्रेस वेल एंड वी आर ऑल्सो रेडी टू कम आउट ऑफ अवर कम्फर्ट जोन। पर अगर हमारे पास गोल नहीं है, ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो हम अपने सारे टैलेंट को ना वेस्ट करते हैं। इसलिए आपके नजर के सामने एक गोल होना बेहद जरूरी है, तभी आप बहाव से अपोजिट जाकर अपने लिए काम करोगे और उस गोल को जब अचीव करोगे आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ेगा। सिर्फ टैलेंट होना इज नॉट इनफ, टैलेंट के साथ गोल होना और हार्डवर्क करना ये भी बेहद जरूरी है। और जो मेहनत करके ऊपर आता है ना, उसका कॉन्फिडेंस उसके चेहरे से ही झलकता है। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि, मैं आपको मिलूंगी कुछ प्यारे गानों के बाद, तब तक के लिए इन प्यारे गानों को एंजॉय कीजिए।

0: एयर कंडीशन क्लासरूम्स में वर्ल्ड क्लास लैब्स के साथ KLE कॉलेज ऑफ फार्मेसी एयरपोर्ट रोड
1: KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलागामी एडमिशन ओपन फॉर 2026-27 डॉक्टर एम एस शेषगिरी कैंपस बेलागामी KCET कोड E036 मोर देन 500 प्लेसमेंट ऑफर्स वर रिसीव्ड इन 2025-26 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड अ हाईएस्ट एनुअल पैकेज ऑफ अप टू 16 लाख पर एनम द यूनिवर्सिटी हैज 150 प्लस एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स एंड 50 प्लस डॉक्टरल डिग्री होल्डर्स वेल इक्विप्ड लर्निंग फैक्ट्री टिंकरिंग लैब एंड वाईफाई एनेबल्ड हॉस्टल फैसिलिटीज आर अवेलेबल यूजी कोर्सेज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल Engineering, Computer Science and Engineering, AI, Electronics and Communication Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, BCA, PG courses, MCA, MBA and M.Tech in Structural Engineering, Civil. 60 plus companies including Infosys, Juniper Networks, HPE, Federal Bank and Bosch visit the campus for recruitment. For more information, call 0831-244-0322 or

हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा। हमारे कामों का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारा कॉन्फिडेंस। हम कितने कॉन्फिडेंट है उसी के ऊपर हमारा काम कितना अच्छा होगा ये निर्भर करता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ काम में या प्रोफेशनल लाइफ में जरूरी नहीं है, इवन पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। हम आधी बाजी तो हमारे कॉन्फिडेंस से ही मार जाते हैं, इसीलिए इस कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करते रहना जरूरी है। इसी टॉपिक पर आज हम बातें करेंगे, पर आज का शो शुरू करने से पहले आपको कुछ प्यारे गाने सुना देती हूँ। रिलैक्स हो जाइए और इस शो को एंजॉय कीजिए। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

दोस्तों अब समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, पर जाने से पहले तीन इम्पोर्टेंट शब्द मैं आपको बताऊंगी। रिसर्च, प्रिपेयर एंड परफॉर्म। जब कोई भी काम के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त करते हैं, पूरी तैयारी आप करते हैं, तो वो काम आपके जितना सही ढंग से कोई और नहीं कर सकता। और जब आप वो सही तरीके से काम करते हैं, आपको सही रिजल्ट मिलता है, तो अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, नेवर से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, लर्न फ्रॉम द राइट पीपल, सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ, रिसर्च, प्रिपेयर एंड परफॉर्म। और इसी के साथ मैं आरजे स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और अपने आप पर काम कीजिए। जब आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना, तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। यादों की बारात लेके आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त RJ स्वरा।

दोस्तों, यादों की बारात में हम हमेशा आपको कुछ ऐसे गाने सुनाते हैं जो आप रोज तो नहीं सुनते, पर जब भी सुनते हैं तब गुनगुनाए बिना रह नहीं पाते। ऐसे ही सदाबहार नगमों की सौगात लेके आई हूँ मैं। शुरू करते हैं आज का शो। दोस्तों, आज का शो राकेश रोशन जी के ऊपर आधारित है। उनकी लाइफ की कुछ इंटरेस्टिंग बातें, उनका करियर, उनका स्ट्रगल, हम सब कुछ जानेंगे। पर पहले सुनते हैं ये पहला गाना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। खट्टा मीठा इस फिल्म से ये गाना है जो 1978 में रिलीज़ हुई थी। ये गाना कृष्ण कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है और इसे म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने, लिखा है गुलजार साहब ने। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

यादों के बारात के खूबसूरत से सफर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी आरजे स्वरा और आप सुन रहे हैं वेणुध्वनि। दोस्तों, राकेश जी की लाइफ बचपन से ही थोड़ी मुश्किल रही है। उनके बचपन की शुरुआत वर्सोवा के एक गैराज वाले घर से हुई थी, पर धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी और बेहतर होने लगी। फिर उनको सातारा मिलिट्री स्कूल में एडमिशन दिलाया गया और बाद में वो पुणे में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। जब ऐसा लग रहा था कि लाइफ अच्छी चल रही है, तभी किस्मत ने उनको एक झटका दिया। उनके पिताजी रोशनलाल जी की मृत्यु से उनकी घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। उनके भाई राजेश अभी काफ़ी छोटे थे, तो उन्होंने मुंबई आके एज असिस्टेंट डायरेक्टर HS रोवेल के साथ काम शुरू किया। पहले तो वो चौथे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, फिर धीरे धीरे चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, पर वो अपने काम से ज़्यादा खुश नहीं थे। आगे क्या हुआ ज़रूर बताऊंगी, पर उससे पहले अगला गाना सुनते हैं, कोई रोको ना दीवाने को। प्रियतमा फिल्म का ये गाना है जो 1977 में रिलीज हुई थी। इसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है अनजान साहब ने और म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने। इस फिल्म में जितेंद्र, नीतू सिंह, राकेश रोशन और आशा सचदेव ने काम किया था। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना और हमारी गपशप चालू रहेगी। आप सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसो।

दोस्तों आरजे स्वरा के साथ आप यादों की बारात के खूबसूरत से सफर पर निकल पड़े हैं। आज हम राकेश रोशन जी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करते हुए वो थोड़े खुश नहीं थे। उसी दौरान उन्हें जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार ने पास बुला के पूछा कि बेटा आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने काम से खुश नहीं लग रहे। तब राकेश रोशन ने बताया कि मैं तो फिल्म में एक्टिंग करना चाहता हूँ, पर शुरुआत कहाँ से की जाए ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और तभी राजेंद्र कुमार ने उनकी मदद की और उनकी पहली फिल्म उनको मिली जिसका नाम था घर घर की कहानी। फिर उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम करना शुरू किया, काफ़ी टॉप हीरोइंस के साथ काम किया, कुछ नई हीरोइंस के साथ भी काम किया, पर उनका करियर वहीं पर रुक गया था, आगे ही नहीं बढ़ रहा था। और जो नई नई हीरोइंस के साथ वो काम कर रहे थे वो हीरोइंस काफ़ी आगे बढ़ने लगी थी। राकेश रोशन फिर परेशान हो गए। फिर उनकी लाइफ में क्या हुआ बताऊंगी, पर उससे पहले अगला गाना सुनते हैं। ये मौसम आया है कितने सालों में, लता मंगेशकर का ये खूबसूरत सा गाना जिनके साथ में किशोर कुमार की आवाज़ भी है, फिल्म आक्रमण से है जो 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राकेश रोशन और रेखा और उनके साथ अशोक कुमार और संजीव कुमार ने भी काम किया था। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना और आप सुनते रहिए वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनासू।

आरजे स्वरा के साथ यादों की बारात का हमारा खूबसूरत सा सफर चल रहा है दोस्तों। अगला गाना आज के शो में मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो है आज उनसे पहली मुलाकात होगी। पराया धन इस फिल्म का ये गाना है जो 1971 में रिलीज हुई थी। राकेश रोशन के साथ हेमा मालिनी भी हमें इस फिल्म में दिखी थी। इस गाने को गाया है किशोर कुमार ने और म्यूजिक दिया है आरडी बर्मन ने, लिखा है आनंद बख्शी ने। दोस्तों, एक्टर के तौर पर राकेश जी ने खुद को आजमाया और ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं हुई। फिर उन्होंने सोचा कि प्रोड्यूसर ही तो सब कुछ करता है, तो क्यों ना एक फिल्म प्रोड्यूस की जाए। तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था आपके दीवाने, और उस फिल्म में उन्होंने काम भी किया, पर एज ए प्रोड्यूसर भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए और फिर से उनकी किस्मत ने उनको शिकस्त दे दी। आगे क्या हुआ जानेंगे, पर ये गाना सुन लीजिए। लौट के आइए 90.4 FM KLE कनसूबे।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू और यादों की बारात का हमारा खूबसूरत सा सफर चल रहा है। प्रोड्यूसर के तौर पे सक्सेस हासिल ना होने के बाद उन्होंने रिस्क ली और डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाया। इस बार रिस्क बहुत बड़ा था, अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती तो फिर वो बॉलीवुड में एक अनसक्सेसफुल इंसान बन के रह जाते और शायद उनकी लाइफ का स्ट्रगल जारी रहता। पर किस्मत ने अलग ही रंग दिखाया। उन्होंने जो फिल्म डायरेक्ट की थी खुदगर्ज, वो सक्सेसफुल साबित हुई। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और जितेंद्र ने लीड रोल निभाए थे। इसके साथ राकेश रोशन जी का करियर सक्सेस की ओर निकल पड़ा। इसके बाद बॉलीवुड में वो टॉप के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पे फेमस हो गए। आगे क्या हुआ मैं आपको सुनाऊंगी, पर अगला गाना तो सुन लीजिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, खून भरी मांग इस फिल्म का ये गाना है, जिसे गाया है साधना सरगम ने और नितिन मुकेश ने, लिखा है इंदिवर ने और म्यूजिक दिया है राजेश रोशन ने। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

वेलकम बैक दोस्तों, यादों की बारात का खूबसूरत सा सफर चल रहा है और मैं हूँ आपकी हम सफर आरजे स्वरा। दोस्तों, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर राजेश जी की लगभग सारी फिल्में के से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, खून भरी मांग, किशन कन्हैया, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया और क्रिश के शायद उनका लकी लेटर है। अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ, समा है सुहाना सुहाना। घर घर की कहानी, ये राकेश जी की पहली फिल्म थी। इसी पहली फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना है जो 1975 में रिलीज हुई थी। किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज में ये गाना है, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, म्यूजिक दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

और ये गाना राकेश रोशन और जलाल आगाह के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। उनके साथ इस फिल्म में बलराज सहानी, निरूपा रॉय और नीतू सिंह ने भी काम किया था। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

वेलकम बैक दोस्तों, यादों की बारात का खूबसूरत सा सफर चल रहा है और राकेश जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने बताया, उनकी फिल्म में केस स्टार्ट होती है, पर एक ऐसी फिल्म है जो केस स्टार्ट नहीं होती, जिसका नाम है जुदाई, मतलब प्यार है। राकेश जी के दो बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, जितेंद्र और ऋषि कपूर। उनकी दोस्ती के वक्त ने कई कड़े इम्तिहान लिए हैं और हर इम्तिहान पे उनकी दोस्ती खरी उतरी है। आज भी जीतू यानी जितेंद्र, चिंटू यानी ऋषि और गुड्डू यानी राकेश रोशन एक दूसरे को मिलने के लिए वक्त जरूर निकालते हैं। अगला गाना सुनते हैं दुनिया की नजरों से। बहुरानी इस फिल्म का ये गाना है जो 1990 में रिलीज हुई थी। आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक है, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज है और लिखा है अनजान ने। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

दोस्तों, यादों की बारात में अब समय हो चुका है आप सभी को आज के शो का आखिरी गाना सुनाने का। पर उससे पहले राकेश जी की पत्नी पिंकी रोशन ये मशहूर प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की बेटी है। राकेश जी को एक बेटा है जिसका नाम है ऋतिक रोशन और वो भी एक सक्सेसफुल एक्टर है। उनकी बेटी है सुनैना रोशन, जिन्होंने अपने पिताजी के जीवन के ऊपर बेस्ड एक बुक लिखी थी जिसका नाम है टू डैड विथ लव। जाने से पहले आज के शो का आखिरी गाना सुन लीजिए। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

3.4 की LE कनसु पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

गाते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुध्वनि 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात। हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड न।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।